ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी पुलिस ने टोक्यो के शिमाल में तोचिगी प्रीफेक्चर में एक खानदान पर जानलेवा हमले के सिलसिले में 20 के बेटे के एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। इससे गिरफ्तार अफराद की तादाद 6 हो गई है। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि कम अज कम एक और शख्स ने मुश्तबा अफराद को हिदायत दी थी। जुमेरात को तोचिगी प्रीफेक्चर के कामी नोकावा कस्बे में मुतअद्दिद अफराद एक घर में घुस गए। एक 69 साल खातून को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। इसके दो बालिग बेटे उस वक्त जख्मी हो गए जब वो फार्म पर काम करके घर वापस आए। पुलिस ने इतवार को डकैती और कत्ल के इल्जाम में 25 साल थाकेमाई म्यू को गिरफ्तार कर लिया। वो टोक्यो के करीब कानागावा प्रीफेक्चर से है। इसे योकोहामा शहर के एक कारोबारी होटल से हिरासत में लिया गया। वो 7 माह की बेटी के साथ एक कमरे में थी। कबल अजी इसी रोज उसके शोहर को टोक्यो के हनेदा हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। 28 साल थाकेमाई काइतो बैरून मुल्क सफर करने ही वाला था। पुलिस का ख्याल है कि इस केस में एक गुमनाम और वक्ती मुजरिम ग्रोह मुलविस है। ऐसे ग्रोह हमलावरों को भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कानागावा प्रीफेक्चर से हाई स्कूल के 4 16 साल तालबे इल्मों को डकैती और कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया गया है। ख्याल किया जाता है कि वो हमला आवर हैं। हुकाम का ख्याल है कि इतवार को गिरफ्तार किए गए जोड़े ने तालबे इल्मों को अहकाम दिए थे। जापान की मईशत पर खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात पर तश्वीश में इजाफे ने मुल्क की तवील मुद्दती कलीदी शराय सूद को 29 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। जापानी हुकूमत के 10 साल बॉन्ड्स का मुनाफा पीर के रोज 2

0: 8% तक पहुंच गया। लेन देन से मुंसलिक कंपनी जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि आखिरी बार ये सतह पर मई 1997 में पहुंचा था। सरमायाकारों को तश्वीश है कि तेल की कीमतों में इजाफा तिजारती खसारे का बाइस बन सकता है। टोक्यो के मगरिब में वाकया ओकुथामा कस्बे में पहाड़ी रास्ते पर चहलकदमी करने वाला एक शख्स रीछ के हमले से जख्मी हो गया है। पुलिस का कहना है कि फायर फाइटर्स को इतवार के रोज लगभग दोपहर के वक्त करीबी साकाई इलाके में वाकये की इत्तला देने वाली कॉल मौसूल हुई। इस शख्स को बजाहिर चेहरे और बाजुओं पर शदीद चोटें आईं। उसने दीगर अफराद को बताया कि उस पर रीछ ने हमला किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जब उसे हवाई जहाज से अस्पताल ले जाया गया तो वो होश में था और उसकी हालत तश्वीशनाक नहीं थी। कस्बे के हुक्काम का कहना है कि जब इस शख्स पर रीछ ने हमला किया, वो अकेला चहलकदमी कर रहा था। टोक्यो बल्दिया उज्मा का मुरतब करदा रीछ देखे जाने की इतलात पर मबनी नक्शा अप्रैल से अब तक ओकुतामा कस्बे में इसकी 7 इतलात दिखा रहा है, जिनमें 4 मई को साकाई इलाके की एक रिपोर्ट भी शामिल है। इतलात के मुताबिक यह हमला आबाद इलाके से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर हुआ है।
1: अब आज की अहम खबरों की शह सुर्खियां। अमरीकी सदर ने ईरान को खबरदार किया है कि वक्त गुजर रहा है और जोर दिया है कि जंग खत्म करने के मुआहदे के लिए वो रियायत दे। मुतहदा अरब अमारात के दारुलहुकूमत अबूधाबी में हुक्काम के मुताबिक एक ड्रोन हमले के नतीजे में एक जौहरी बिजली घर के अहाते में बरकी जनरेटर में आग लग गई। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 19 मई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टियां पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात लंबे खींचने की स्थिति में संभावित आर्थिक दुष्प्रभावों से निपटने के उपाय तलाशने के प्रयास कर रही हैं। सोमवार को सरकार और सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी और जापान इनोवेशन पार्टी की बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने कहा कि सरकार स्थिति का उचित आकलन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आर्थिक गतिविधियां और जनजीवन बाधित होने से बचने के लिए समय रहते कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोनों दलों से जुलाई से सितंबर तक की अवधि के लिए गैस व बिजली की दरों के संबंध में ठोस उपाय तैयार करने को कहा। इस मामले के प्रभारी पार्टी अधिकारी जल्द ही उपाय तैयार करने की योजना बना रहे हैं ताकि इन दरों को पिछली गर्मियों की तुलना में कम बनाए रखा जा सके। एलडीपी के कार्यवाहक महासचिव हागियुदा कोइची ने पेट्रोल की देशव्यापी औसत खुदरा कीमत को प्रति लीटर लगभग 170 येन पर सीमित करने के मौजूदा उपाय का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये उपाय लंबे समय तक अपनाया नहीं जा सकता और हमें जनता को समझाने के प्रयास करने होंगे कि परिवहन लागत सहित विभिन्न कारकों के चलते कच्चा तेल महंगा पड़ता जा रहा है। सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टियां इन विचारों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में मदद का दायरा तय करेंगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जापान ने अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के प्रयासों के तहत कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख तेल उत्पादक देश ब्राज़ील से मदद का अनुरोध किया है। जापान के अर्थ व्यापार एवं उद्योग मंत्री आकाज़ावा रियोसे ने सोमवार को टोक्यो में ब्राज़ील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा से मुलाकात की। आकाज़ावा ने किसी एक क्षेत्र पर जापान की निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। वियेरा ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार को पहले जितनी ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। ईरान के हालातों के कारण सामान्य जलमार्ग बाधित हो गए हैं, जिनके चलते जापान अब ऐसे आपूर्ति स्रोत तलाश रहा है जो होर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल ना करते हों। ब्राज़ील 2024 में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश था। होर्मुज जलडमरू मध्य प्रभावी रूप से बंद होने के बाद से ब्राज़ील के निर्यात में ज़बरदस्त उछाल देखा गया है। हालांकि इस समय ब्राज़ील से जापान को होने वाला निर्यात ना के बराबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को किया जाने वाला नियोजित हमला टालने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा, मैंने इसे कुछ समय के लिए, उम्मीद है कि शायद हमेशा के लिए टाल दिया है, लेकिन संभवतः कुछ समय के लिए ही टाला है, क्योंकि हमारी ईरान के साथ बेहद अहम बातचीत हुई है और हम देखेंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों के नेताओं ने इसे 2-3 दिन के लिए टालने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को परमाणु अस्त्रों से वंचित रखने वाला कोई समझौता हो जाता है तो हम संतुष्ट होंगे। इससे पहले ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा था कि उन्होंने सैन्य प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि समझौता ना होने की स्थिति में वे ईरान पर भीषण हमला करने के लिए तैयार रहें। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान को पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से अमरीकी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में संशोधनों की समीक्षा की है और अब उसने जवाब भेज दिया है, लेकिन ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं दिख रहा है। सरकारी प्रसारक IRIB ने बताया कि जलडमरू मध्य का प्रबंधन करने वाली ईरान की नई इकाई ने एक आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है। आई आर

आईबी के अनुसार जलमार्ग से गुजरने से पहले जहाज़ों को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट प्राधिकरण के साथ समन्वय करना होगा और किसी भी अनधिकृत आवागमन को अवैध माना जाएगा। आईआरआईबी के अनुसार 1500 जहाज़ अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक ंगोजी ओकोंजो इवेयाला ने आगाह किया है कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था पिछले 80 वर्षों में सबसे बड़े व्यवधान का सामना कर रही है। टोक्यो में सोमवार को एनएचके के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एक तरफ दुनिया ने अमेरिका की शुल्क संबंधी कार्रवाई झेली है, वहीं दूसरी ओर WTO के अन्य सदस्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है और वो जमाने के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। WTO अपनी निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है। इसकी प्रमुख चुनौतियों में से एक ये है कि सभी सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक है, लेकिन ऐसा न होने पर इसका काम ठप पड़ जाता है। संगठन ने मार्च में एक मंत्री स्तरीय बैठक की, लेकिन वो कोई कार्य योजना अपनाने में विफल रहा। ओकोंजो इवेयाला ने इस विफलता का कारण अन्य मुद्दों पर सदस्यों के बीच मतभेद बताया, लेकिन साथ ही जोर देकर कहा कि प्रगति हुई है। उन्होंने वैश्विक व्यापार का 3/4 हिस्सा WTO की शर्तों पर होने का हवाला देते हुए जोर दिया कि WTO का महत्व अब भी है। जापान की अर्थव्यवस्था में लगातार दूसरी तिमाही में वृद्धि दर्ज हुई है। निर्यात में पुनः बढ़ोतरी और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि इसके मुख्य कारण रहे। कैबिनेट कार्यालय ने मंगलवार को जनवरी से मार्च तक की अवधि के लिए अपने प्रारंभिक आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में पिछली तिमाही की तुलना में 0.5% की वृद्धि हुई है। यह 2.1% की वार्षिक दर के बराबर है। GDP में निजी उपभोग का योगदान आधे से अधिक है। पिछली तिमाही की तुलना में इसमें 0.3% की वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं ने वस्त्रों और बाहर खाने पर अधिक खर्च किया है। अमेरिका को वाहन निर्यात में सुधार के चलते कुल निर्यात में 1.7% की वृद्धि हुई। अमरीकी शुल्कों के कारण वाहनों के निर्यात में आई गिरावट के बाद ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। कैबिनेट कार्यालय का कहना है कि ईरान संघर्ष का प्रभाव सीमित रहा, लेकिन दीर्घावधि में आर्थिक विकास को लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि कच्चे तेल की लगातार ऊंची कीमतें कुछ व्यवसायों पर बुरा असर डाल रही हैं।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 12वें पाठ में हम सीखेंगे राय बताना और समझाना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल असाकुसा में आई है। अब वो सेंसोजी मंदिर में है और तावीजें देख रही है।
0: जापानी भाषा में तावीज को ओमा मोरी कहते हैं और उन्हें शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं 12वें पाठ की बातचीत।
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: ताम ने एक तावीज उठाया जिसमें घंटी लगी हुई थी और कहा,
2: कोरे कावाई ओ मामोरी देस ने।
1: ये प्यारा तावीज है ना?
0: मिया ने सहमति दिखाते हुए कहा,
3: होंतो कावाई।
1: सचमुच प्यारा है।
0: ताम को एक और तावीज भी पसंद आया,
2: कोरे मो ई देस ने।
1: ये भी अच्छा है।
0: फिर कर्मचारी ने बताया,
4: सोरे वा एन मुसुबी नो मामोरी देस।
1: वो एन मुसुबी का तावीज है। 800 येन का है।
0: ताम को ठीक से समझ नहीं आया कि कर्मचारी ने क्या कहा है।
1: एन मुसु।
0: तब मिया ने समझाया,
3: एन मुसुबी,
1: प्रेमी मिलने का तावीज।
0: ये सुनकर ताम ने कर्मचारी से वो तावीज देने को कहा।
2: जा, कोरे ओ कुदासाई।
1: तो फिर ये दे दीजिए।
0: ओमामोरी तरह तरह के होते हैं, व्यापार में सफलता के लिए, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए। इनके अलावा यहाँ बहुत तरह के ओमामोरी और भी मिलते हैं। ताम ने जोड़ी बनाने वाला तावीज चुना।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: कावाई ओमामोरी देस ने,
1: यानी प्यारा तावीज है ना। इस वाक्य को याद करके आप अपनी राय बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
6: कावाई
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्यारा।
6: ओमामोरी
0: का मतलब है तावीज।
6: देस
0: का अर्थ हिंदी के है जैसा होता है और उसके बाद
6: ने
0: लगाने का अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की उम्मीद करते हैं, यानी आपको लगता है कि उसकी राय भी आपकी राय की तरह होगी।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषण
6: कावाई
1: की अंतिम ध्वनि ई है। इस तरह जिन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है उन्हें ई विशेषण कहते हैं। विशेषण उस संज्ञा से पहले लगता है जिसकी वो विशेषता बताता है, जैसे
6: कावाई ओ मेमोरी,
1: यानी प्यारा तावीज।
0: लेकिन मिया के वाक्य में संज्ञा नहीं है। उसने कहा होन तो कावाई, यानी सचमुच प्यारा है।
1: इस तरह ई विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना भी हो सकता है, जैसे
6: कावाई
1: यानी प्यारा है। अंत में
6: देसने
1: जोड़ने से बनता है
6: कावाई देसने।
1: इससे वाक्य और विनम्र बन जाता है।
0: आज की बातचीत में ताम का एक और वाक्य है
6: कोरे मो ई देसने,
0: यानी ये भी अच्छा है। इसमें एक और ई विशेषण आया है जो ई यानी अच्छा है।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
6: कावाई, कावाई देसु ने, कावाई ओमामोरी देसु ने।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें दो लोग एक टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
7: この T シャツ
8: 面白いですね。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
5: मीते कोनो टीशर्ट्स,
1: देखो ये टीशर्ट।
0: यहाँ
6: मीते
0: क्रिया
6: मीरू
0: यानी देखना का ते रूप है। किसी को अनौपचारिक तरीके से कुछ दिखाते समय इसका इस्तेमाल होता है।
6: कोनो
0: का अर्थ है ये और
6: टीशर्ट्स
0: का मतलब है टीशर्ट।
1: उसके बाद आदमी ने कहा,
7: ओमोशिरोई देसु ने,
0: दिलचस्प है ना।
1: इस वाक्य में ई विशेषण
6: ओमोशिरोई
1: यानी दिलचस्प या मजेदार का इस्तेमाल हुआ है। अंत में ने लगाकर बोलने वाला सुनने वाले की सहमति की उम्मीद कर रहा है।
0: तो आप भी सुनिए और दोहराइए।

0: एक दुकान में हैं जहां आपने बहुत सुंदर बटुआ देखा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप बोलना चाहते हैं महंगा है ना? महंगा को जापानी भाषा में कहते हैं
1: थकाई थकाई।
0: तो कोशिश कीजिए।
2: थकाई ですね।
3: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
4: これをください。
1: これをください。
0: का अर्थ है ये दे दीजिए।
1: ください
0: का मतलब है कृपया दीजिए। खरीदारी करते समय अपनी पसंद की चीज की तरफ इशारा करते हुए ये शब्द बोल सकते हैं।
3: या रेस्टोरेंट में हो तो मेन्यू में अपनी पसंद के व्यंजन की तरफ इशारा कीजिए और कहिए
1: これをください।
3: रेस्टोरेंट के कर्मचारी आपकी बात समझ जाएंगे।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: これをください।
3: तो दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
4: これ、かわいいお守りですね。
5: 本当、かわいい。
4: これもいいですね。
6: それは縁結びのお守りです。800円になります。
4: 縁結び、
5: 恋人ができるお守り。
4: じゃあ、これをください。
0: और अब बारी है अंश घूमे मियाँ के साथ की। आज की बातचीत सेंसोजी मंदिर में हो रही थी, इसलिए आज हम बताएंगे जापान के शिंतो और बौद्ध मंदिरों के बारे में।
3: शिंतो मंदिर यानी श्राइन और बौद्ध मंदिर पूरे जापान में फैले हुए हैं। अधिकतर श्राइनों में जापान के प्राचीन धर्म शिंतो के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि बौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित हैं।
0: श्राइन और बौद्ध मंदिर पर्यटकों में भी लोकप्रिय हैं। इसके प्रमुख कारण हैं इन मंदिरों का वास्तुशिल्प, इनमें देखी जा सकने वाली बौद्ध प्रतिमाएं और अन्य कलाकृतियां, और इनके अद्भुत बगीचे।
3: टोक्यो में सेंसोजी मंदिर के अलावा मेजी जिंगू श्राइन लोकप्रिय है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र में नारा शहर है, जहां का तोदाईजी मंदिर भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
0: इसके अलावा शिमाने प्रीफेक्चर की इज़ुमो ताइशा श्राइन पौराणिक कथाओं के लिए जानी जाती है।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में सुनेंगे रोबोट मकान मालकिन हारूजी से ताम की मजेदार बातचीत। तब तक के लिए
3: सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 19 मई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टियां पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात लंबे खींचने की स्थिति में संभावित आर्थिक दुष्प्रभावों से निपटने के उपाय तलाशने के प्रयास कर रही हैं। सोमवार को सरकार और सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP और जापान इनोवेशन पार्टी की बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री ताकायची सानाई ने कहा कि सरकार स्थिति का उचित आकलन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आर्थिक गतिविधियां और जनजीवन बाधित होने से बचने के लिए समय रहते कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोनों दलों से जुलाई से सितंबर तक की अवधि के लिए गैस व बिजली की दरों के संबंध में ठोस उपाय तैयार करने को कहा। इस मामले के प्रभारी पार्टी अधिकारी जल्द ही उपाय तैयार करने की योजना बना रहे हैं ताकि इन दरों को पिछली गर्मियों की तुलना में कम बनाए रखा जा सके। LDP के कार्यवाहक महासचिव हागियुदा कोइची ने पेट्रोल की देशव्यापी औसत खुदरा कीमत को प्रति लीटर लगभग 170 येन पर सीमित करने के मौजूदा उपाय का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये उपाय लंबे समय तक अपनाया नहीं जा सकता और हमें जनता को समझाने के प्रयास करने होंगे कि परिवहन लागत सहित विभिन्न कारकों के चलते कच्चा तेल महंगा पड़ता जा रहा है। सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टियां इन विचारों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में मदद का दायरा तय करेंगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जापान ने अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के प्रयासों के तहत कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख तेल उत्पादक देश ब्राज़ील से मदद का अनुरोध किया है। जापान के अर्थ, व्यापार एवं उद्योग मंत्री आकाजावा रियोसेई ने सोमवार को टोक्यो में ब्राज़ील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा से मुलाकात की। आकाजावा ने किसी एक क्षेत्र पर जापान की निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। वियेरा ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार को पहले जितनी ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। ईरान के हालातों के कारण सामान्य जलमार्ग बाधित हो गए हैं, जिनके चलते जापान अब ऐसे आपूर्ति स्रोत तलाश रहा है जो होर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल ना करते हों। ब्राज़ील 2024 में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश था। होर्मुज जलडमरू मध्य प्रभावी रूप से बंद होने के बाद से ब्राज़ील के निर्यात में ज़बरदस्त उछाल देखा गया है, हालांकि इस समय ब्राज़ील से जापान को होने वाला निर्यात ना के बराबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को किया जाने वाला नियोजित हमला टालने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा, मैंने इसे कुछ समय के लिए, उम्मीद है कि शायद हमेशा के लिए टाल दिया है, लेकिन संभवतः कुछ समय के लिए ही टाला है, क्योंकि हमारी ईरान के साथ बेहद अहम बातचीत हुई है और हम देखेंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों के नेताओं ने इसे 2-3 दिन के लिए टालने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को परमाणु अस्त्रों से वंचित रखने वाला कोई समझौता हो जाता है तो हम संतुष्ट होंगे। इससे पहले ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा था कि उन्होंने सैन्य प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि समझौता ना होने की स्थिति में वे ईरान पर भीषण हमला करने के लिए तैयार रहें। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान को पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से अमरीकी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में संशोधनों की समीक्षा की है और अब उसने जवाब भेज दिया है, लेकिन ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं दिख रहा है। सरकारी प्रसारक IRIB ने बताया कि जलडमरू मध्य का प्रबंधन करने वाली ईरान की नई इकाई ने एक आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है। IRIB के अनुसार जलमार्ग से गुजरने से पहले जहाज़ों को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट प्राधिकरण के साथ समन्वय करना होगा और किसी भी अनधिकृत आवागमन को अवैध माना जाएगा।
IRIB के अनुसार 1500 जहाज अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक ंगोजी ओकोंजो इवेयाला ने आगाह किया है कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था पिछले 80 वर्षों में सबसे बड़े व्यवधान का सामना कर रही है। टोक्यो में सोमवार को NHK के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एक तरफ दुनिया ने अमेरिका की शुल्क संबंधी कार्रवाई झेली है, वहीं दूसरी ओर WTO के अन्य सदस्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है और वो जमाने के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। WTO अपनी निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है। इसकी प्रमुख चुनौतियों में से एक ये है कि सभी सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक है, लेकिन ऐसा न होने पर इसका काम ठप पड़ जाता है। संगठन ने मार्च में एक मंत्री स्तरीय बैठक की, लेकिन वो कोई कार्य योजना अपनाने में विफल रहा। ओकोंजो इवेयाला ने इस विफलता का कारण अन्य मुद्दों पर सदस्यों के बीच मतभेद बताया, लेकिन साथ ही जोर देकर कहा कि प्रगति हुई है। उन्होंने वैश्विक व्यापार का 3/4 हिस्सा WTO की शर्तों पर होने का हवाला देते हुए जोर दिया कि WTO का महत्व अब भी है। जापान की अर्थव्यवस्था में लगातार दूसरी तिमाही में वृद्धि दर्ज हुई है। निर्यात में पुनः बढ़ोतरी और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि इसके मुख्य कारण रहे। कैबिनेट कार्यालय ने मंगलवार को जनवरी से मार्च तक की अवधि के लिए अपने प्रारंभिक आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में पिछली तिमाही की तुलना में 0.5% की वृद्धि हुई है। यह 2.1% की वार्षिक दर के बराबर है। GDP में निजी उपभोग का योगदान आधे से अधिक है। पिछली तिमाही की तुलना में इसमें 0.3% की वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं ने वस्त्रों और बाहर खाने पर अधिक खर्च किया है। अमेरिका को वाहन निर्यात में सुधार के चलते कुल निर्यात में 1.7% की वृद्धि हुई। अमरीकी शुल्कों के कारण वाहनों के निर्यात में आई गिरावट के बाद ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। कैबिनेट कार्यालय का कहना है कि ईरान संघर्ष का प्रभाव सीमित रहा, लेकिन दीर्घावधि में आर्थिक विकास को लेकर चिंताएं हैं क्योंकि कच्चे तेल की लगातार ऊंची कीमतें कुछ व्यवसायों पर बुरा असर डाल रही हैं।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 12वें पाठ में हम सीखेंगे राय बताना और समझाना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल असाकुसा में आई है। अब वो सेंसोजी मंदिर में है और तावीजें देख रही है।
0: जापानी भाषा में तावीज को ओमामोरी कहते हैं और उन्हें शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं 12वें पाठ की बातचीत।
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।

0: ताम ने एक तावीज उठाया जिसमें घंटी लगी हुई थी और कहा,
1: कोरे कवाई ओ मामोरी देसु ने।
2: ये प्यारा तावीज है ना?
0: मिया ने सहमति दिखाते हुए कहा,
3: होंतो कवाई।
2: सचमुच प्यारा है।
0: ताम को एक और तावीज भी पसंद आया,
1: कोरे मो ई देसु ने।
2: ये भी अच्छा है।
0: फिर कर्मचारी ने बताया,
4: सोरे वा एन मुसुबी नो मामोरी देसु।
2: वो एन मुसुबी का तावीज है।
4: 800 येन नी नारिमासु।
2: 800 येन का है।
0: ताम को ठीक से समझ नहीं आया कि कर्मचारी ने क्या कहा है।
2: एन मुसु।
0: तब मिया ने समझाया,
3: एन मुसुबी कोइबितो गा देकिरु ओमामोरी।
2: एन मुसुबी, प्रेमी मिलने का तावीज।
0: ये सुनकर ताम ने कर्मचारी से वो तावीज देने को कहा।
1: जा कोरे ओ कुदासाई।
2: तो फिर ये दे दीजिए।
0: ओमामोरी तरह तरह के होते हैं, व्यापार में सफलता के लिए, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए। इनके अलावा यहाँ बहुत तरह के ओमामोरी और भी मिलते हैं। ताम ने जोड़ी बनाने वाला तावीज चुना।
2: आज का मुख्य वाक्य है,
1: कवाई ओमामोरी देसु ने,
2: यानी प्यारा तावीज है ना। इस वाक्य को याद करके आप अपनी राय बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: कवाई
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्यारा।
5: ओमामोरी
0: का मतलब है तावीज,
5: देस
0: का अर्थ हिंदी के है जैसा होता है, और उसके बाद
5: ने
0: लगाने का अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की उम्मीद करते हैं, यानी आपको लगता है कि उसकी राय भी आपकी राय की तरह होगी।
2: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषण
5: कवाई
2: की अंतिम ध्वनि ई है। इस तरह जिन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है उन्हें ई विशेषण कहते हैं। विशेषण उस संज्ञा से पहले लगता है जिसकी वो विशेषता बताता है, जैसे
5: कवाई ओ मेमोरी,
2: यानी प्यारा तावीज।
0: लेकिन मिया के वाक्य में संज्ञा नहीं है। उसने कहा होंतो कवाई, यानी सचमुच प्यारा है।
2: इस तरह ई विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना भी हो सकता है, जैसे
5: कवाई
2: यानी प्यारा है। अंत में
5: देसु ने
2: जोड़ने से बनता है
5: कवाई देसु ने।
2: इससे वाक्य और विनम्र बन जाता है।
0: आज की बातचीत में ताम का एक और वाक्य है,
5: कोरे मो ई देसु ने,
0: यानी ये भी अच्छा है। इसमें एक और ई विशेषण आया है जो ई यानी अच्छा है।
2: तो सुनिए और दोहराइए,
5: कवाई कवाई देसु ने, कवाई ओ मामोरी देसु ने।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें दो लोग एक टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
6: मीते कोनो टी शर्ट्स
7: ओमोशिरोई देसु ने।
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
6: मीते कोनो टी शर्ट्स,
2: देखो ये टी शर्ट।
0: यहाँ
5: मीते
0: क्रिया
5: मीरु
0: यानी देखना का ते रूप है। किसी को अनौपचारिक तरीके से कुछ दिखाते समय इसका इस्तेमाल होता है।
5: कोनो
0: का अर्थ है ये और
5: टी शर्ट
0: का मतलब है टी शर्ट।
2: उसके बाद आदमी ने कहा,
7: ओमोशिरोई देसु ने,
0: दिलचस्प है ना।
2: इस वाक्य में ई विशेषण
5: ओमोशिरोई
2: यानी दिलचस्प या मजेदार का इस्तेमाल हुआ है। अंत में ने लगाकर बोलने वाला सुनने वाले की सहमति की उम्मीद कर रहा है।
0: तो आप भी सुनिए और दोहराइए,
5: ओमोशिरोई ओमोशिरोई देसु ने।
2: अब राय बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी में हैं जो स्वादिष्ट ब्रेड के लिए प्रसिद्ध है। वहां आप ये देखकर चौंक गए कि ब्रेड बहुत बड़ी है, तो आपको बोलना है बड़ी है ना। बड़ी को जापानी भाषा में कहते हैं
5: ओकी ओकी।
2: तो कोशिश कीजिए,
6: ओकी देसु ने।
0: अब मान लीजिए कि आप

0: का अर्थ है ये दे दीजिए।
1: कुदासाई
0: का मतलब है कृपया दीजिए। खरीदारी करते समय अपनी पसंद की चीज की तरफ इशारा करते हुए ये शब्द बोल सकते हैं।
2: या रेस्तरां में हो तो मेन्यू में अपनी पसंद के व्यंजन की तरफ इशारा कीजिए और कहिए
1: कोरे ओ कुदासाई।
2: रेस्तरां के कर्मचारी आपकी बात समझ जाएंगे।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: कोरे ओ कुदासाई।
2: तो दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
3: これ、かわいいお守りですね。
4: 本当、かわいい。
3: これもいいですね。
5: それは縁結びのお守りです。800円になります。
6: 縁結び、
4: 恋人ができるお守り。
3: じゃあ、これをください。
1: トラベルガイド।
0: और अब बारी है अंश घूमे मियां के साथ की। आज की बातचीत सेंसोजी मंदिर में हो रही थी, इसलिए आज हम बताएंगे जापान के शिंतो और बौद्ध मंदिरों के बारे में।
2: शिंतो मंदिर यानी श्राइन और बौद्ध मंदिर पूरे जापान में फैले हुए हैं। अधिकतर श्राइनों में जापान के प्राचीन धर्म शिंतो के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि बौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित हैं।
0: श्राइन और बौद्ध मंदिर पर्यटकों में भी लोकप्रिय हैं। इसके प्रमुख कारण हैं इन मंदिरों का वास्तुशिल्प, इनमें देखी जा सकने वाली बौद्ध प्रतिमाएं और अन्य कलाकृतियां, और इनके अद्भुत बगीचे।
2: टोक्यो में सेंसोजी मंदिर के अलावा मेजी जिंगू श्राइन लोकप्रिय है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र में नारा शहर है, जहां का तोदाईजी मंदिर भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
0: इसके अलावा शिमाने प्रीफेक्चर की इजुमो ताइशा श्राइन पौराणिक कथाओं के लिए जानी जाती है।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में सुनेंगे रोबोट मकान मालकिन हारूजी से ताम की मजेदार बातचीत। तब तक के लिए
2: सायोनारा।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। आलमी तिजारती तंजीम WTO की डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो एवियाला ने खबरदार किया है कि आलमी तिजारती निज़ाम 80 सालों में अपनी सबसे बड़ी रुकावटों का सामना कर रहा है। पीर को टोक्यो में एनएचके को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने निशानदेही की कि जहां दुनिया ने अमरीका की जानिब से महसूलाती इकदाम देखे हैं, वहीं दीगर WTO अराकीन ने भी मुख्तलिफ इकसाम के इकदाम नाफिज किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि निज़ाम में इस्लाहात नहीं हो रही और यह निज़ाम वक्त के साथ हम आहंग नहीं हो रहा। WTO अपने फैसला साजी के अमल में इस्लाहात की कोशिश कर रही है। इसके अहम चैलेंजेस में से एक ये है कि तमाम अराकीन के दरमियान इत्तफाक राय की शर्त की वजह से इसकी सरगर्मियाँ मफलूज हैं। अगरचे तंजीम ने मार्च में एक वजारती इजलास मुनाकिद किया, लेकिन तरीक़ाकार मंजूर करने में नाकाम रही। ओकोंजो एवियाला ने इस नाकामी की वजह अराकीन के दरमियान दीगर मसाइल पर इख्तलाफात को करार दिया, लेकिन जोर दिया कि पेशरफ्त हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि WTO अब भी अहमियत रखती है और निशानदेही की कि आलमी तजारत का 3/4 हिस्सा WTO की शराइत पर हो रहा है। जापान की मैशत मुसलसल दूसरी सामाही में फैली है। इस नमो की बुनियादी वजह बरामदात में बहाली और सारिफ खर्च में इजाफा था। काबीना दफ्तर ने जनवरी से मार्च तक की मुद्दत के लिए इब्तदाई आदादोशुमार मंगल को जारी किए।

0: これもいいですね。
1: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
0: じゃあこれをください。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
5: अब मियां का सफरी हिदायतनामा। आज के मकान में का मकाम सेंसोजी मंदिर है। इस मुनासिबत से जापान के मंदिरों और इबादत गाहों के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
6: जापान में बड़े शहरों से पहाड़ों की घाटियों तक हर इलाके में इबादत गाहें और मंदिर पाए जाते हैं। इबादत गाहों या माबदों में कदीम जमाने से शिंतो मत देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि मंदिरों का ताल्लुक कोई 1500 साल कबल दूसरे एशिया ममालिक के रास्ते से आने वाले मजहब बुद्ध मत से है।
5: अक्सर इबादत गाहें और मंदिर सियाहती मकामात के तौर पर भी मशहूर हैं।
6: जी हाँ, इसकी एक वजह सदियों का वो हुनर है जो इनकी इमारात महात्मा बुद्ध के मुजस्मों और दीगर आरायशी अशिया से मंसूब है, और यकीनन इनके मुलहका बागात भी नहायत शानदार हैं।
5: टोक्यो में मेजी जिंगू इबादत गाह और सेंसोजी मंदिर मकबूल सियाहती मकामात हैं,
6: और मगरबी जापान का नारा प्रीफेक्चर महात्मा बुद्ध के देवहेकल मुजस्मे के हामिल तोदाईजी मंदिर के लिए जाना जाता है। एक और मशहूर मकाम इज़ुमो ताइशा इबादत गाह है, जो देवमालाई सरजमीन कहलाने वाले शिमाने प्रीफेक्चर में है। मकबूल सियाहती मकामात पर इंतहाई भीड़ होती है, इसलिए अलग सुबह दरवाजे खुलते ही दाखिल होना बेहतर होगा, और चूंकि दरवाजे खुलने से ऐन कबल फर्श वगैरह की सफाई भी हुई होती है, इसलिए माहौल भी साफ सुथरा होता है, यानी वो वक्त ज्यादा पुरसकून होता है।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 19 मई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टियां पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात लंबे खींचने की स्थिति में संभावित आर्थिक दुष्प्रभावों से निपटने के उपाय तलाशने के प्रयास कर रही हैं। सोमवार को सरकार और सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी और जापान इनोवेशन पार्टी की बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने कहा कि सरकार स्थिति का उचित आकलन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आर्थिक गतिविधियां और जनजीवन बाधित होने से बचने के लिए समय रहते कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोनों दलों से जुलाई से सितंबर तक की अवधि के लिए गैस व बिजली की दरों के संबंध में ठोस उपाय तैयार करने को कहा। इस मामले के प्रभारी पार्टी अधिकारी जल्द ही उपाय तैयार करने की योजना बना रहे हैं ताकि इन दरों को पिछली गर्मियों की तुलना में कम बनाए रखा जा सके। एलडीपी के कार्यवाहक महासचिव हागियुदा कोइची ने पेट्रोल की देशव्यापी औसत खुदरा कीमत को प्रति लीटर लगभग 170 येन पर सीमित करने के मौजूदा उपाय का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये उपाय लंबे समय तक अपनाया नहीं जा सकता और हमें जनता को समझाने के प्रयास करने होंगे कि परिवहन लागत सहित विभिन्न कारकों के चलते कच्चा तेल महंगा पड़ता जा रहा है। सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टियां इन विचारों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में मदद का दायरा तय करेंगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जापान ने अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के प्रयासों के तहत कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख तेल उत्पादक देश ब्राज़ील से मदद का अनुरोध किया है। जापान के अर्थ, व्यापार एवं उद्योग मंत्री आकाजावा रियोसेई ने सोमवार को टोक्यो में ब्राज़ील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा से मुलाकात की। आकाजावा ने किसी एक क्षेत्र पर जापान की निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। वियेरा ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार को पहले जितनी ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। ईरान के हालातों के कारण सामान्य जलमार्ग बाधित हो गए हैं, जिनके चलते जापान अब ऐसे आपूर्ति स्रोत तलाश रहा है जो होर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल ना करते हों। ब्राज़ील 2024 में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश था। होर्मुज जलडमरू मध्य प्रभावी रूप से बंद होने के बाद से ब्राज़ील के निर्यात में ज़बरदस्त उछाल देखा गया है। हालांकि इस समय ब्राज़ील से जापान को होने वाला निर्यात ना के बराबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को किया जाने वाला नियोजित हमला टालने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा, मैंने इसे कुछ समय के लिए, उम्मीद है कि शायद हमेशा के लिए टाल दिया है, लेकिन संभवतः कुछ समय के लिए ही टाला है क्योंकि हमारी ईरान के साथ बेहद अहम बातचीत हुई है और हम देखेंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों के नेताओं ने इसे 2-3 दिन के लिए टालने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को परमाणु अस्त्रों से वंचित रखने वाला कोई समझौता हो जाता है तो हम संतुष्ट होंगे। इससे पहले ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा था कि उन्होंने सैन्य प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि समझौता ना होने की स्थिति में वे ईरान पर भीषण हमला करने के लिए तैयार रहें। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान को पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से अमरीकी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में संशोधनों की समीक्षा की है और अब उसने जवाब भेज दिया है, लेकिन ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं दिख रहा है। सरकारी प्रसारक IRIB ने बताया कि जलडमरू मध्य का प्रबंधन करने वाली ईरान की नई इकाई ने एक आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है। IRIB के अनुसार जलमार्ग से गुजरने से पहले जहाज़ों को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट प्राधिकरण के साथ समन्वय करना होगा और किसी भी अनधिकृत आवागमन को अवैध माना जाएगा।
आईआरआईबी के अनुसार 1500 जहाज अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक Ngozi Okonjo-Iweala ने आगाह किया है कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था पिछले 80 वर्षों में सबसे बड़े व्यवधान का सामना कर रही है। टोक्यो में सोमवार को NHK के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एक तरफ दुनिया ने अमेरिका की शुल्क संबंधी कार्रवाई झेली है, वहीं दूसरी ओर WTO के अन्य सदस्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है और वो जमाने के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। WTO अपनी निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है। इसकी प्रमुख चुनौतियों में से एक ये है कि सभी सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक है, लेकिन ऐसा न होने पर इसका काम ठप पड़ जाता है। संगठन ने मार्च में एक मंत्री स्तरीय बैठक की, लेकिन वो कोई कार्य योजना अपनाने में विफल रहा। Okonjo-Iweala ने इस विफलता का कारण अन्य मुद्दों पर सदस्यों के बीच मतभेद बताया, लेकिन साथ ही जोर देकर कहा कि प्रगति हुई है। उन्होंने वैश्विक व्यापार का 3/4 हिस्सा WTO की शर्तों पर होने का हवाला देते हुए जोर दिया कि WTO का महत्व अब भी है। जापान की अर्थव्यवस्था में लगातार दूसरी तिमाही में वृद्धि दर्ज हुई है। निर्यात में पुनः बढ़ोतरी और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि इसके मुख्य कारण रहे। कैबिनेट कार्यालय ने मंगलवार को जनवरी से मार्च तक की अवधि के लिए अपने प्रारंभिक आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में पिछली तिमाही की तुलना में 0.5% की वृद्धि हुई है। यह 2.1% की वार्षिक दर के बराबर है। GDP में निजी उपभोग का योगदान आधे से अधिक है। पिछली तिमाही की तुलना में इसमें 0.3% की वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं ने वस्त्रों और बाहर खाने पर अधिक खर्च किया है। अमेरिका को वाहन निर्यात में सुधार के चलते कुल निर्यात में 1.7% की वृद्धि हुई। अमरीकी शुल्कों के कारण वाहनों के निर्यात में आई गिरावट के बाद ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। कैबिनेट कार्यालय का कहना है कि ईरान संघर्ष का प्रभाव सीमित रहा, लेकिन दीर्घावधि में आर्थिक विकास को लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि कच्चे तेल की लगातार ऊंची कीमतें कुछ व्यवसायों पर बुरा असर डाल रही हैं।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 12वें पाठ में हम सीखेंगे राय बताना और समझाना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल असाकुसा में आई है। अब वो सेंसोजी मंदिर में है और तावीजें देख रही है।
0: जापानी भाषा में तावीज को ओमामोरी कहते हैं और उन्हें शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं 12वें पाठ की बातचीत।
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: ताम ने एक तावीज उठाया जिसमें घंटी लगी हुई थी और कहा,
2: कोरे कावाई ओमामोरी देसु ने।
1: ये प्यारा तावीज है ना?
0: मिया ने सहमति दिखाते हुए कहा,
3: होंतो कावाई।
1: सचमुच प्यारा है।
0: ताम को एक और तावीज भी पसंद आया,
2: कोरे मो ई देसु ने।
1: ये भी अच्छा है।
0: फिर कर्मचारी ने बताया,
4: सोरे वा एनमुसुबी नो ओमामोरी देसु।
1: वो एनमुसुबी का तावीज है।
4: 800 yen
1: का है।
0: ताम को ठीक से समझ नहीं आया कि कर्मचारी ने क्या कहा है।
1: एन्मुसु।
0: तब मिया ने समझाया,
3: एन्मुसुबी, कोई भी तुम्हें देखिए ओमामोरी।
1: एन्मुसुबी, प्रेमी मिलने का तावीज।
0: ये सुनकर ताम ने कर्मचारी से वो तावीज देने को कहा।
2: जा, कोरे ओ कुदासाई।
1: तो फिर ये दे दीजिए।
0: ओमामोरी तरह तरह के होते हैं, व्यापार में सफलता के लिए, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए। इनके अलावा यहाँ बहुत तरह के ओमामोरी और भी मिलते हैं। ताम ने जोड़ी बनाने वाला तावीज चुना।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: कावाई ओमामोरी देसु ने,
1: यानी प्यारा तावीज है ना। इस वाक्य को याद करके आप अपनी राय बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
6: कवाई
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्यारा।
6: ओमामोरी
0: का मतलब है तावीज।
6: देस
0: का अर्थ हिंदी के है जैसा होता है और उसके बाद
6: ने
0: लगाने का अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की उम्मीद करते हैं, यानी आपको लगता है कि उसकी राय भी आपकी राय की तरह होगी।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषण
6: कवाई
1: की अंतिम ध्वनि ई है। इस तरह जिन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है उन्हें ई विशेषण कहते हैं। विशेषण उस संज्ञा से पहले लगता है जिसकी वो विशेषता बताता है, जैसे
6: कवाई ओ मेमोरी,
1: यानी प्यारा तावीज।
0: लेकिन मिया के वाक्य में संज्ञा नहीं है। उसने कहा होन तो कवाई, यानी सचमुच प्यारा है।
1: इस तरह ई विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना भी हो सकता है, जैसे
6: कवाई
1: यानी प्यारा है। अंत में
6: देसु ने
1: जोड़ने से बनता है
6: कवाई देसु ने।
1: इससे वाक्य और विनम्र बन जाता है।
0: आज की बातचीत में ताम का एक और वाक्य है
6: कोरे मो ई देसु ने,
0: यानी ये भी अच्छा है। इसमें एक और ई विशेषण आया है जो ई यानी अच्छा है।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
6: कवाई कवाई देसु ने, कवाई ओमामोरी देसु ने।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें दो लोग एक टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
7: このTシャツ。
8: 面白いですね。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
5: मीते कोनो टीशर्ट,
1: देखो ये टी शर्ट।
0: यहाँ
6: मीते
0: क्रिया
6: मीरु
0: यानी देखना का ते रूप है। किसी को अनौपचारिक तरीके से कुछ दिखाते समय इसका इस्तेमाल होता है।
6: कोनो
0: का अर्थ है ये और
6: टी शर्ट
0: का मतलब है टी शर्ट।
1: उसके बाद आदमी ने कहा,
7: ओमोशिरोई देसु ने,
0: दिलचस्प है ना।
1: इस वाक्य में ई विशेषण
6: ओमोशिरोई
1: यानी दिलचस्प या मजेदार का इस्तेमाल हुआ है। अंत में ने लगाकर बोलने वाला सुनने वाले की सहमति की उम्मीद कर रहा है।
0: तो आप भी सुनिए और दोहराइए,
6: ओमोशिरोई ओमोशिरोई देसु ने।
1: अब राय बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी में हैं जो स्वादिष्ट ब्रेड के लिए प्रसिद्ध है। वहां आप ये देखकर चौंक गए कि ब्रेड बहुत बड़ी है, तो आपको बोलना है, बड़ी है ना। बड़ी को जापानी भाषा में कहते हैं
6: ओकी ओकी।
1: तो कोशिश कीजिए,
5: ओकी देसु ने।
0: अब मान लीजिए कि आप एक दुकान में हैं जहां आपने बहुत सुंदर बटुआ देखा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप बोलना चाहते हैं महंगा है ना। महंगा को जापानी भाषा में कहते हैं
6: थकाई थकाई।
0: तो कोशिश कीजिए,
5: थकाई देसु ने।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए,
2: कोरे ओ कुदासाई।
6: कोरे ओ कुदासाई
0: का अर्थ है ये दे दीजिए।
6: कुदासाई
0: का मतलब है कृपया दीजिए। खरीदारी करते समय अपनी पसंद की चीज की तरफ इशारा करते हुए ये शब्द बोल सकते हैं।
1: या रेस्तरां में हो तो मेन्यू में अपनी पसंद के व्यंजन की तरफ इशारा कीजिए और कहिए
6: कोरे ओ कुदासाई।
1: रेस्तरां के कर्मचारी आपकी बात समझ जाएंगे।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए,
6: कोरे ओ कुदासाई।
1: तो दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
3: 縁結び恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
8: ミーヤーのトラベルガイド。

0: पर्यटकों में भी लोकप्रिय हैं। इसके प्रमुख कारण हैं इन मंदिरों का वास्तुशिल्प, इनमें देखी जा सकने वाली बौद्ध प्रतिमाएं और अन्य कलाकृतियां और इनके अद्भुत बगीचे।
1: टोक्यो में सेंसोजी मंदिर के अलावा मेजी जिंगू श्राइन लोकप्रिय है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र में नारा शहर है, जहां का तोदाईजी मंदिर भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
0: इसके अलावा शिमाने प्रीफेक्चर की इज़ुमो ताइशा श्राइन पौराणिक कथाओं के लिए जानी जाती है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में सुनेंगे रोबोट मकान मालकिन हारुजी से ताम की मजेदार बातचीत। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

0: ये खबरें एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। आलमी तजारती तंजीम WTO की डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो एवियाला ने खबरदार किया है कि आलमी तजारती निज़ाम 80 सालों में अपनी सबसे बड़ी रुकावटों का सामना कर रहा है। पीर को टोक्यो में एनएचके को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने निशानदेही की कि जहां दुनिया ने अमरीका की जानिब से महसूलाती इकदाम देखे हैं, वहीं दीगर WTO अराकीन ने भी मुख्तलिफ इकसाम के इकदाम नाफिज किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि निज़ाम में असलाहत नहीं हो रही और यह निज़ाम वक्त के साथ हम आहंग नहीं हो रहा। WTO अपने फैसला साजी के अमल में असलाहत की कोशिश कर रही है। इसके अहम चैलेंजेस में से एक ये है कि तमाम अराकीन के दरमियान इत्तफाक राय की शर्त की वजह से इसकी सरगर्मियाँ मफलूज हैं। अगरचे तंजीम ने मार्च में एक वजारती इजलास मुनाकिद किया, लेकिन तरीक़ाकार मंजूर करने में नाकाम रही। ओकोंजो एवियाला ने इस नाकामी की वजह अराकीन के दरमियान दीगर मसाइल पर इख्तलाफात को करार दिया, लेकिन जोर दिया कि पेशरफ्त हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि WTO अब भी अहमियत रखती है और निशानदेही की कि आलमी तजारत का 3/4 हिस्सा WTO की शराइत पर हो रहा है। जापान की मैशियत मुसलसल दूसरी सामाही में फैली है। इस नमू की बुनियादी वजह बरामदात में बहाली और सारिफ खर्च में इजाफा था। काबीना दफ्तर ने जनवरी से मार्च तक की मुद्दत के लिए इब्तदाई आदादोशुमार मंगल को जारी किए हैं। उनके मुताबिक अफरात जर के रद्दोबदल के बाद मजमुई कौमी पैदावार गुज़श्ता सामाही के मुकाबले में 0.5% बढ़ी है। सालाना बुनियाद पर यह शरह 2.1% बनती है। इनफरादी खर्च मजमुई कौमी पैदावार के निसफ से ज्यादा है। यह पिछले 3 महीनों के मुकाबले में 0.3% बढ़ा क्योंकि सार्फिन ने कपड़ों और बाहर खाने पर ज्यादा खर्च किया है। अमरीका को गाड़ियों की तरसील में बहाली के बायस बरामदात में 1.7% इजाफा हुआ। ये वाशिंगटन के महसूलात की वजह से होने वाली गिरावट के बाद की बहाली है। काबीना दफ्तर का कहना है कि ईरान तनाजे के असरात महदूद थे, तहम तवील मुद्दती नमू के बारे में तशवीश मौजूद है क्योंकि खाम तेल की मुसलसल बुलंद कीमतें कुछ कारोबारों पर बोझ डाल रही हैं।
1: और सामीन, आखिर में आज की अहम खबरों का खुलासा। हुकूमत जापान और हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें मशरक वस्ती की मौजूदा सूरत हाल तूल पकड़ने की सूरत में मुमकिन इक्तिसादी असरात से निपटने के लिए इकदाम कर रही हैं। जापान ने तेल पैदा करने वाले बड़े मुल्क ब्राजील से कहा है कि वो खाम फराहमी का उसूल यकीनी बनाने में मदद दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज कहा है कि उन्होंने ईरान पर मनसूबा शुदा हमले को रोकने का फैसला किया है जो मंगल के रोज किया जाना तय था। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।